वस्त्र ना पहरे अहनिस कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता पागो पे तान अपना किया कमाना अलमल खाई सृशाई पाई मूर्खंदे पत गवाई विणदा वै किश थाए न पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी

सारी है जो आया सो चल सी सब को यही बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मुने विसारी है अपन हम थे अपन

जौ तन चीर अंगना मोरो पिंड परे तो प्रीत ना तोरो साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोर अवर संग तोरी जालो ऐसीरीतम जित मैं प्यारा विसरे नानक साई पलीरीत जित साहिब सेती पत रहे सतनाम

0: सदा वसे हर नालो।
1: आप जी रोजाना इस स्थान तो अमृतमयी बाणी दी लड़ीवार शब्द विचार दा लाहा प्राप्त करदे आ रहे हो। बिहागड़ा राग दे विच धन धन गुरु रामदास पातशाह जी वल्लों वार रूप दे विच पावन बाणी दा उचारण होया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दे विच 22 वारां ने, जिस विचों अज दी ए वार बेहागड़े की वार। महला चौथा धन गुरु रामदास महाराज दी, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी पावन अंग 548 दे उपर सुभायमान है। श्लोक भावें गुरु अमरदास महाराज जी दे हन, पर पौड़ी जड़ी है वो गुरु रामदास महाराज वल्लों उचारण कीती है। आप सारे सूझवान हो, रोजाना गुरबाणी दे नाल जुड़न वाले हो। वार जिमें अज गुरु रामदास महाराज दी है, पर श्लोक गुरु अमरदास महाराज जी दा, जिस दी वार होएगी पौड़ी उसे ही गुरु साहब वल्लों उचारण कीती होवेगी। आरंभता दे विच जिमें आसा की वार है,

अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता रंग तमसा पूर्णयासा अवे न व्यापे चिंता अकात कथा कथि न जाए तीन लोक रहया समय

ताको सगल कटा जस गयो सत नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला तीजा काचा तन संचय मूर्ख गावार मन मुख पूले अंद गावार मिखिया कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए काचा तन संचय मूर्ख गावार

दुखदार सुरोग पैजा सुखताम न होई, तू करता करना मैं नाही, जाहो करी ना होई। बलिहारी कुदर तपस्या तरंत न जाई लिख्या रहाओ, जात मैं जो जोत मैं जाता, कलकला पर पुर रहया, तू सच्चा साहिब सवाल जिन की।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो आप हाथ दे मोहे बचाव हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सबे रन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शतर हमारे मारी है आब हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हो जो सदा हमारे पच्छा श्रीअस्तु जो करिहो रक्षा राख लयो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुमहो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बापतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहें हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदे अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सिवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पल मो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी दे कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पड़ पड़ की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आ करख कर तुहों कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आव अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत नरालम जानत बेद भेद अर आलम ड्रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपा हण अनुमानद महा मूड़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव ड्रंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंड जे रज से तज कीनी उतबज खाण बहर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमड़ भयो शंकर अकेठा सगरी श्रेष्ठ दखाए अचंप आद जुगाद स्वरूप संयंप आब रक्षा मेरी तुम करो
सिखियो वार्य सिख संहरो दुष्ट जिते उठवात उत्पाता सकल मलेच करो रणगाता जे आस तुझे तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवाए मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बार ते है ताके काल निकट न है अह रक्षा हुए ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो ताके ताप तन कमाए हरे हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शह शवै सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फांसती ताहें उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दरिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर ठोर महो हो सहाई दुष्ट दोख दे ले हो बचाई खड़ग के

सर्वठोर मोहो सहाय दुष्ट दोख दे लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जाबते तुमरे ताबते को आँख तरे नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहो भेद कहे हम एक ना जान्यो सिरियस पाण

पर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दूख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा कर धां तेरा सब किच है जिस दे हैं सो पावे सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे सच्चा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जेना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहों जिस दिया एह वड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो पे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशब तित कर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तैं सुख होवा तित घर अनाहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे।

सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर बुरे बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनाहद तुरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस अधारो जेको खावे जेको पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां।

तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण और को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तीवा तन मन थीवे हरिया तरस पाया मेहरामत होई

मन मुख भूले अंध गावार बिकया कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए काचा तन संचे है मूरख गावार मन मुख पुल्ले अंध गावार बिखिया कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन फोने आवे जाए रहाओ मन मुख पुल्ले सब मरे गवार पवजल डूबे

साचरते आहिनिस बैराग चौं जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाक हर नाम समाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे भाग प्राप्त हुए सब किच सच्चा सच्चा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे विख आपे सच लाए सब किच साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे विख आपे सच लाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोहला रागोड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखी है करती का हुए विचारो, तित कर गावो सोहला सिवर हो सिरजनहार। तो मंगाव हो मेरे निरपो का सोहला, हो वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कौन शुमार। संबत सहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सजन सी सड़ियां ज्यों होवै।

गुर अमरदास परसिया पोहम पातिक बिनासा। गुर अमरदास परसिया सिद्ध सादिक आसासा। गुर अमरदास परसिया ध्यान लइया पो मुक्का। गुर अमरदास परसिया अबो लबै गो चुका।

आप नारायण तलातार जग में परवर्यो निरंकार्याकार ज्योत जग मंडल करयो जह कह तह परपूर शब्द दीपक दीपायो जह सिखे संग रहयो तत।

जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे शरण परहते उबर है छोड़ जम पुर की लिखे भगत।

0: तर पर हर पर
1: चित चित वो अरदास कहो पर कह पे ना सको सर्वचिंत तुझ पास साध।

एक चित है लिव लावे, काम क्रोध वस करे, पवन उडंत ना तावे, निरंकार के बसे देश, हुकम बुझ विचार पावे।

हार मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निचल ताम सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ

साड़ तपंदा तिस लगै, हर ना ना जिना पास, जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस, वाहिगुरु जी का खालसा।